0: स्वर साँचे जाग्न सके विवेक मनमा मातै त हो ईश्वर। साँचे जाग्न सके विवेक मनमा मातै त हो ईश्वर।
1: आजको कविता

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: ਧੂਰਾ ਸੀ।
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राज्य
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: California, extreme energy drink.
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

हरी दाया का खानी बाला कई मा एक दिन तिमले माटो खाका थियो हे हरी दाया का खानी आगर भन्दा देव केलाई संसार देखाइदि।